बल्ले हरे सचिया सैदा सैदा बल्ले हरे तो दिया गे यारे दासे हमारी वायर तो दिया

दिल्ली में शीशगंज रकाबगंज वाला साहेब मंगला साहेब सतो चंडिया साहेब जी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले वाला रे।

अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कहज कोट इंद्र इंद्राण सहि सहाण गणज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम बरनत सुमत शतरतारी शत्रिपत शैल रूप शेतनाथ शौनी कर शाया बर शत्रिपत गाइया विश्वनाथ विश्वंपर वेदनाथ बाला कर बाजीगर बानतारी बंदन बताइया

रोए सा मिलेंगे बच्चे शर्म जो होए दोरा डंका बाजे पते कान है कलंक तार छात्र चक्रवर्ती छत्र जागृते श्याप शुभम सुरदास दुकाल अंबरणा से दयाल स्वरूपे सदायंग संगे अपंगम बुद्धि देखते दरबार में दरबारा सचखंड सहन कारा लक्ष्मी दरबार।

तव प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखेत प्राण मति के श्री भगवान की भाई कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनुभूतंग सुरंग सवारे गोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूप फली बितन्यावत शीस न जात बिचारे एते भय तो कह भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदत हिंसत ही है राज हजारे भूत भवे के भगवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ नहान दया दम दाम सुसंजम नेम अनेक विषेख है वेद पुराण देव कुरान जमीन जमान सबान के बिख है पौना हार जति जत धार सब सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुपाह सुसाज सन्नाह दुर्जान्त लेंगे भारी घुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हलैन हलेंगे।

आत्म तंगन मान मलेंगे श्रीपति श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरियार विचार है सार की धार बछैया तोरत देश मलिंद मवासन मात गजान के मान मलैया गाड़े गढ़ान के तोड़न हार सो बातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनिंदर निसाचर भूत भवेख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैथल मैं पल ही पल मैं सब था थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरे जगत सत्र सवय अब लोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराधिप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोटि स्नान जातक दान अनेक स्वंबर साज परेंगे ब्रह्म महेश्वर संसचीपद अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपद के प्रस है भगते नर फेर न देह धरेंगे कहाँ भयो जो दो लोचन बूंद के बैठ रहे हो पक ध्यान लगायो नाद फिरो लिया साध समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखे आन सो बैठ के ऐसे ही ऐस सो वैस बितायो साज कहो सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले बाहन पूज थर्यो सिर काहू ले लिंग करे लटकायो काहू लख्यो हर आवाजी दिशा मह काहू पछाह कुशीस निवायो को उपतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन धायो कूर क्रिया और ज्यो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो त्वा प्रसाद तोमर छंद हर

हरिया भेख हरिया दुख हरिया द्वै हरी अकाल हरिया पाल हरिया छेद हरिया भेद हरिया जंत्र हरिया मंत्र हरि सो तेज हरिया तंत्र हरि अजात हरिया पात हरिया मित्र हरिया मात हरिया रोग हरिया शोक हरिया भरम हरि।

तुहि वृषस्तुहि पतस्तुहि चितस्तुहि उर्ध्वस्तुहि भजस्तु अंग रटस्तु अंग ठटस्तु अंग जिमी तुहि जमा तुहि मकी तुहि मका तुहि अभू तुहि अभा तुहि अछू तुहि अछा तुहि जतस्तुहि व्रतस्तुहि गतस्तु।

तेज ज्यों तेज में अतेज जस तेज लीन ताही तयो बज सब ताही मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है कित गंग बासी कित मदीना मक्का निवासी कित उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित मुंह में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को बरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बटे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे चुआ चार बोझ हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हारे गोरन मनाए हरे मडी मडली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पाजा।

रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न परमं न जन्मं न जातं अद्वैखंग वेखंग जो निस्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परापरम प्रज्ञा प्रकाशी अचेतं गच्छयाद अद्वै अविनाशी न जातं न बातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय सारे गड़े फिर मिटे बनाए अगादे अभयाद अद्वै अविनाशी परे अंग परापरम पूरण प्रकाशी न आदंग न व्याधंग कादंग स्वरूपे अखंड प्रतापाद अच्छय विभूते न जन्मंग न मरणंग न बरणंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाधे उदंडे अमंडे प्रचंडे ब्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्र सुभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग अभेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नियछयाद अद्वय जोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग अभय नर्भिखादंग अछेदंग अभेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न गायंग न कर्मंग न त्रासंग न ब्रासंग न भेदंग न परमंग सदेवंग सदा सिद्ध बिरदंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभादनुक्तं प्रतापे युक्तं गच्छयाद विक्तं यथाभि विभुक्तं गच्छयाद अच्छय स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मन्त्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न वर्मं न शर्मं न साके न वर्मं न चर्मं न कर्मं न वाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आद रूपे कहूं गंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग

की भगत मैं ब्रह्म भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हूं कहूं जच विद्या धरे मानवी हूं कहूं राजसी हूं कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं गोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध शेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं अरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी वस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाग्या कहूं देववाणी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं यंत्र नीतं कहूं शस्त्र धारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं।

अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अक्षय स्वरूप अनासन तुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंत सर्वं प्रकार अनुभूत तेज अंश जगाद करता सदीव हरता सनादयासन अडोल अनुभूत करम दाता दयालु अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतबान जय जात पात ने शत्रु मित्र जय नेह गेह नेह चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम बेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम धाम नहीं बर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं शत्रु साध जय त्रास वास नहीं देह नाश जय आद अंत नहीं रूप राज जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो नांग अक्षय स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उजरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतुल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कै कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तत् पावत न पार कई उर्द बाह देशन भ्रमंत कई उर्द मध पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र उचरंत वेद कई गोक काप कथत कतेब कई अगन होत्र कई बौन हार कई गर्त कोट मृत को आहार कई गर्त साक पै पत्र भच नहीं तदप देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीर्थ धर्म कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या बढ़ंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं नैकतास पायतन पार कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तप्तास पायतन पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्र उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घदान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास समृत उचार कई भजत एक भग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जोग कल्पं प्रजंत नहीं तद दप्तास पायतन अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तद दुष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन भोग टू सर्व धर्मा।

देव बरंग सब कीनी दीन जमीन जमाजे रचेंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न शोक सुखंग जे रोग न शोक न भोग भयंग जे खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न माद पितंग जे रचियंग छत्री छत्र चितंग जे राग न रेख न रोग भणंग जे द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचेऊ दस चार करी नवखंड सचेऊ रज ताम तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रुबिंद नगिंद नगं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज से तज उद भुजंग की ये देव देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जे तात न मातन ब्राद सुतंग जे रोग न शोक न भोग भुवंग जे जम पह किन्नर जाछ जुआंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जाछ भुजंग दिए गज बाजर थातिक पांत गणंग भूत भविख भवान तुआंग जय अंडज से तज जेर रजंग रज भूमा काज पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भुव मेरा काज निवास चितंग रज रोजय का दीर्श चंद्र पितंग दुद चंद दिनी

अभूत भूत है सदा गंज गंज मानिए, अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दास दीव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है, सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानिए, सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए, न राग रंग रूप है, न रोग राग रेक है, अदोग दाग दग है, अभूत ब्रह्म भेक है, न दात मात जात है, न पात चिहन वर्ण है, अदेग सेग भेक है, सदीव विश्ववर्ण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्ववर्ण है, जिमी जमान के बिके सदीव करम भरम है, अद्वैग है, अभेक है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्वठोर में विशेख आन मानिए, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण अपुराण नेत नेत कह बतावई, न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए, गंज आदि देव है कहो सु कैस पाइये, जिमी जमान के बिगे समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाड है, न घाट बाड होत है, न हान है न बान है, समान रूप जानिए, मकीन ओ मकान अप्रमाण तेज मानिए, न ने न देह है, न गेह है, न जात है, न बाद है, न मंत्र है, न मित्र है, न दात है, न मात है, न अंग है, न रंग है, न

न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न ने है न गे है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है अचेत है अभेद है न रंग है न रूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है गरीब है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोच है न ग्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध।

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेक है बलिय रूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न बाद है न चित्र चिहन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानिए अभूम विज है सदा छिज तेज मानिए न आद है न व्याद है अगाध रूप लेखी है दोख है अदाग है अच्छे प्रताप देखी है न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोहकार है न आद है न गाद है न व्याद को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेखरार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपि नराधपि गरंत सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बटे तपस्तपे विशेखी है बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ बेखी है अगाध आद देव की अनाद बात मानी है न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सनेह जानी है सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रहे तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोद है त्व प्रसाद रूवामल छंद रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाद अगाध पुरक सो धर्म करम प्रवीन जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद पुरक अपार हस्त कीट बिखे बसे सब ठौर मैं निरधार जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रमे उजे चक्र

हसेब जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकार ही शिव सकर ओमुख चार सर्व सबद पतार के तर जप ही जह जाप आद देव गाद दे जानाद मूर्त अताप जंत्र मंत्रण आवय कर तंत्र मंत्रण कीन सर्व ठौर रहयो विराज धीराज राज प्रवीन जछ गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैसनन के बिखे विराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मद उर्द न भूमा का स्वनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जात्रण देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सपत पतार के तर जानिए जह ज्योत शेष नाम सहंस फर नहनेत पूर्ण होत सोत सोत हटे सफ सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त थके महागब कड़त गाड़ अनंत हार हार कहियो सबो मिल नाम नाम दुरंत भेद भेद न पायो लखियो न सेवक तेब देव दानो मूड मानो जश न जानै जेब भूत पप भवान भूत

सर्वकर्ता सर्वहर्ता सर्व दयाल देख, चक्र चिहन न वर्ण जाको जात पात न भेख, रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग, सर्व लायक सर्व गायक सर्व ते अनभंग, सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल, दीन बंध दयाल स्वामी याद देव पाल, दीन बंध प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार, वरण चिहन न चक्र जाको चक्र चिहन कार, जात पात न गोत्र गाथा रूप रेख न वरण, सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को वरण, दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख प्रमाथ, दुष्ट हर्ता श्रेष्ठ कर्ता जगत में जय गाथ, भूत भव भवेख भवान प्रमाण देव गंज, आद अंत अनाद श्रीपद परम पुरख अभंज, धर्म के अन कर्म जेत कीन तौन पसार, देव देव गंधर्व किन्नर मच्छ कछ अपार, भूमक जले थले महिमानीय जय नाम, दुष्ट हर्ता पुष्ट कर्ता श्रेष्ठ हर्ता काम, दुष्ट हरना श्रेष्ठ कर्ण दयाल लाल गोबिंद, मित्र बालक शत्रु बालक दीन दयाल मुकंद, अघाओ दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल, दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल, सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम, सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन, सर्व सिमृतन सर्व शासन सर्व वेद विचार, दुष्ट हर्ता विश्वभर्ता आद रूप अपार, दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देव खंड, भूम का जले थले मह जपत जाप अमंड, श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार, आद देव अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार, अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र, वेद व्यास करे कई दिन कोटेन्द्र उपेंद्र, जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार, वेद भेव ना पावे शिव रुद्र ओमुख चार, कोटेन्द्र उपेन्द्र व्यास सनक सनत कुमार, गाय गाय थके सब गुण चक्रत भय मुख चार, आद अंत न मत जाको भूत भव भवान, सत द्वापर तृतीय कलयुग चतुर काल प्रधान, ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार, हार हार थके सब निपाइये तह पार, नारद आदिग भेद व्यासिग मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत, गाय गाय थके

सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विथ तैन दोहरा। को आत्मा स्वरूप है कहां श्रेष्ठ को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा। कह जी तब कह मरण है।

कहो सुसम का सो कहें दम को कहां कहंत को सूरा दाता कवन कहो दंत को मंत दोहरा कहां रंग राजा कवन हरक सो कह कवन को रोगी रागी कवन कहो तत् मोह तवन दोहरा कवन रिष्ट को पुष्ट है कहां श्रेष्ठ को विचार कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है।

दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आदि प्रत्येज चरासुर मारण पति दो धारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो सीम खासुर मर्दन रम कबरदन छत्र चिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप अत्य चंडा सुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विदुंड समहक मथे दान प्रहार नरक निवारण नतम उदारण उर्द अधे जय जय हो सीम खासुर मर्दन रम कबरदन आदि वृत्ते डाबरूडवंगे बर्बवंगे भुजा फरंगे तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुज चमके भूखंड दमके अत्से जमके फुंग फनंग जय जय उसी मैं खासुर मर्दन रम कपर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दाम नित मंकण तुजा फरंकण फणी फुंकारण जोत जिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हो सीम खासुर मर्दन भूमा कासल उर्द अथे दामनी प्रहासन सुषभ निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन जोध ब्रमाचन हृदय नराचन धरम वृते श्रोणंत अचिंती नल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हो सीम खासुर मर्दन पाप विनाशन धरम करे अघ ओघ निवारण दुष्ट प्रचारण श्रेष्ठ उपारण शुद्ध मते फणि अर्भुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हो सीम खासुर मर्दन भूमाकाश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़वी प्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्टभुजे जय जय हो सीम खासुर मर्दन परम विनाशन धरम धुजे घुंगुरु घमंकण सत्रज मंकण फणियर फुंकारण धरम धुजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथाहे एक वृते जय जय हो सीम खासुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे काव्रु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण बितल तले जय जय हुसी सब ठौर निवासन बाये पताल आकाशन ले संकटे निवारण धम उदारण तेज प्रकरखण तुंद तपे दुख दोग दहंती ज्वाल जयंती आद अनाथ अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जबत जिवे जय जय हुसी सहस्र प्रकरखण आद अनिल अगाध अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी धुंध तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हरलंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय हो सी रक्ता सुरखंडन सुम्भर चक्रत निसुम्भ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सूज विसूचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरना से सुभ्र सुभा से दुष्ट ग्रसे चंचला ब्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सीम खासुर मर्दन आद अनाद का दूरधंग घंट का विराजे रुण झुन बाजे भ्रम भाजे सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल बिघ भाजे सुकूप राजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जे मंथन रिझे सब न बजे रूह रणंग जय जय हो सीम खासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रूस रोधन क्रूर वृत्ते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते जालपा जयंती शत्रु मतंते दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सीम खासुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते विरलाज विहंडन चच्छुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृत्ते सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सीम खासुर मर्दन विश्व विध्वंसन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे अंतरनासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दुष्ट प्रतरखण वितल तले अष्टायत बाहन बोल निवाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हो सीम खासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रदक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट प्रदा हे अर्दलगा हे दुख हरे गंजन घुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय उसी मैं खासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहीली जोत जतीली दुंद मते अष्टायत चमकण शस्त्र जमकण दामिन दमकण आद वृत्ते डुकडुकी दमंगे बाघ बबंगे भुजा फरंगे शुद्ध गते जय जय हो सीम खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक बटे पापान विहंडन दोष प्रचंडन।

एक धर्म जे शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अवचल पार जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास दास कहे कौन भेग कहे नाम ताज है कवन जात जे शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निदान कारण स्वरूप जे चक्र चिन्ह नहीं रंग रूप जे खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्दंग विरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुदंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग छिज तेज अनभिजदाग जल थल महीप बंतन दुरंत जेह नेत नेत निशिन उचरंत पायो न जाय जह पैर पार दीना न दोग दहता उदार कई गोट इंद्र जह पान हार कई गोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जेह नेत नेत निशिन उचरंत त्वा प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित संतु बारक नीमन गारे पछ पशुनक नाक नराधिप सर्व समय सबको प्रतपारे पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दो कंदेगत है पर देत न हारे दाहत है दुख दुखन को दल दुजन के पल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूरण प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमा पद भेद कते भेद उचारे रोज ही राज विलोकत राज करो गुरुहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंग भूत भविक भवान बनाए देवा देव खपे अंग बेव न भेव लख्यो भ्रम सियो भरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसेब थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद सो किन श्री पद मापत पाए आद अनंत अगात द्वैक सो भूत भविक भवान अभय है अंत विहीन नाथ माप दाग दुख छिद्र छह है लोगन के करता हरता जल मै थल मह भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ये है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह पिहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगेह अच्छ है जान को देत जमीन को देत जमान को दह है काहे को डोलत है तुमरी सुत सुंदर श्री पदमापत लय है रोगंते अर सोगंते जल जोगंते बहु भांत बचावे शत्रु ने एक चला

जच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब सरण्यावे पाय सके नहीं पार प्रभा हूं को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हु मिल गायो भेद गते वन भेद लगयो सब हार परे हर हाथ न आयो पाय सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनाद सनंदन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेब कुरान अभेद निरपान सब बजहारे भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे याद अनाद अगाध द्वेग द्वेग जप्यो तिन्हि कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिरो कर फेस बोधन के सरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे।

अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासतरण के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़िया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी नबार बाव हिंगुला हिमाल द्याव गुर कर तेजी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना की तेक बांधे अरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी पहचाने निज काम है। मर टाम गेल तेरी मान सो तपस्या करे दृढ़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दलवाली तेरी आज्ञा में चलत है। रूह के रोहेले माग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले बाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे चीन मचीन के शीस न्यावे तिब्बती दे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तोहे दायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्वधन धाम फल फूल स्यों फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काऊ पे नदीन सा

जवा काहे रे मंच तवह उदम जा आहर हर जियो परया सल पत्थर मह जंत उपाए ताका रिजक आगे कर धरया मेरे माधव जी सत संगत मिले।

गुण आख बखाना जो सेवह जो सेवह तुत जी जन नानक तिन कुरबाना हर ध्यावहे हर ध्यावहे तुत जी से जन जग मह सुख वासी से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन तूटी जम की फासी जन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी तिन का भव सब गवासी जन सेव्या जन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी

पह जप बेनता तेरे अनेक पड़े बहु सिमृत शास्त जी कर क्रिया खट करम करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आद परख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जग जग एको सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरते जी तू आपे कर सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सका जानोई

ती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तव चरनन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सभय तुम घावो आप हाथ दै मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सभय कर तारा मोर अच्छा निज कर द करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं जो वर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप हाथ दै मुझे उबरिया मरन काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस धुज जूं करियह रच्छा राख लेहो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा पप धरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रगासा सकल काल का किया तमासा

जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जच्छन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। सेवकण को सेव गुण सुख दियो, सत्रण को पलम बद कियो। घट घट के अंत

बारंत भिन्न भिन्न तह तेती तुमरा लखान जाए पसारा कह बिज सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूप रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पज खान बहर रच दीनी काहूं फूल राजा हो बैठा काहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत पाता सकल मलेच करो रण घाता जे अस ध्वजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे पुरख जावन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट नह ऐ हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक महर हो रिद सिद घर मुँह सब होई दुष्ट छा छुए सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उबा

उबारी सर्व ठौर मोह हो सुहाई दुष्ट दोख ते लेहो पचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल विक सकल देह को हरता दुष्ट दोखी अन को छाय करता श्री अस दुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशद फल पावे सोई दुख न तिसै ब्यापत कोई अड़ल।

छाउ पई सम सत्रह सैस भणी जय अर्ध सैस फुन तीन कह जय भादौ सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा।

वचन विचार चौपई मन अग्न सह प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबहू नह ध्याऊ कान सुन पहचान न तिनसो लिवलागी मोरी पग इनसो महाकाल रखवार हमारू महालो मैं किंग कर थारो अपना जान करो रखवार बाह गहे की लाज बिचार अपना जान मुझे प्रत पर्य चुन चुन सत्र हमारे मरिय।

हाँ जग माहे जो तह प्रभ को ध्याए है अंत स्वर्ग को जाह दोहरा हर हर जन दुई एक है बिचार किश नाहे जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाह दोहरा जब आयस प्रभ को भयो जन्म धरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुना कब बाच दोहरा ठाड भयो मैं जोर कर बचन कहा सुर न्याय पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्यान है संत।

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाकत ने स्वर्ग बास रघुबर कर सगरी पुरी समेत चौपाई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याह छुए सकै न कोई सम सतरै सैस पचावन हाड़ वधी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर

नचे मंगते गिड़ मुड़ पुरहता बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार का वे राजे रानिया बोले आल पताल लकड़ क्या के मुंदड़े।

सतिया मन संतोख बुझ देने कै विचार देंदे मंगै सहसा गुणा शोभ करे संसार चोरा जा रहा कुड़ियारा कारा भा विकार इकोंदा काय चले तावतना बिकाईकार जल जिया बुरी लोहा काराया कार ओए जे आके सो तो जाने तना भी तेरी सार नानक भगता भगसलान सचना मदार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंती।